0: prolong your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 a.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: Trending today.
5: The Weeknd has officially walked back earlier statements regarding his retirement and name change. In a recent interview, the artist confirmed he will continue releasing music under his iconic stage moniker indefinitely.
6: Sound of your city. City FM 89.
7: Chicken pox yaad hai. Ye shingles banke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडरएस्टिमेट ना करें.
8: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
9: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में. जरूर आइएगा.
3: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
10: No talk. Just you and the music.
11: Back to back starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: चिकन पॉक्स याद है, ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें।
3: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें। खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो। ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है। मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें।
4: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में, जरूर आइएगा।
5: You are listening to City FM 89.
6: We are playing your song.
1: You're listening to
7: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: चिकन पॉक्स याद है, ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें।
3: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें। खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो। ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है। मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें।
1: You're listening to City FM 89.
4: Climate change in Pakistan is no longer a distant headline. It's in our

0: will launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 5 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM, FM 89.
0: Coming up next.
1: Full disclosure.
5: You're listening to City FM 89.
6: Trending today.
7: The Weeknd has officially walked back earlier statements regarding his retirement and name change. In a recent interview, the artist confirmed he will continue releasing music under his iconic stage moniker indefinitely.
5: City FM 89.
8: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
9: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
10: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
11: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
12: शौकत खानम, कराची की तकदीर.
13: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
3: City FM 89
1: on the dial.
14: Hello, Pakistan, and a very happy Saturday. You are tuned into Full Disclosure on City FM 89 with your host, Saba Banu Malik. It has been a hot minute, guys. If you have not heard about these strains of colds and flus that are going around, please let me be your warning. I got actually a cold from hell last week to the point that I could not even get one sentence out without hacking away. So I spared your ears for the weekend. So I feel like we haven't hung out in so long. So I'm excited to be back together again today. Without further ado, because we're going to talk all about what happened with Pink, Macklemore, Ed Sheeran, everybody else on the planet that's been talking about this. But to kick off today's show, of course we're going to do it with maybe the one good white boy in the world. Here's Macklemore with Can't Hold Us.
15: Let's go.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: The Weeknd has officially walked back earlier statements regarding his retirement and name change. In a recent interview, the artist confirmed he will continue releasing music under his iconic stage moniker indefinitely.
7: City FM 89.
8: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
9: शौकत खान, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
10: शौकत खानम, कराची की तकनीक.
11: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
12: जहाँ पाँच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पाँच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पाँच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G
13: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026, 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में. जरूर आइएगा.
14: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
4: सिटी एफएम 89.
1: You're listening to
15: Full Disclosure with Saba Baro Malik.
16: Welcome back to Full Disclosure. Here's Anderson Paak and Corday with A Good Day.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m. City FM 89.
3: You got me going crazy.
4: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
5: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
6: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
8: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए। अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे। टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान। तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में, जरूर आइएगा।
10: जहां पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
11: The first time at the disco. When you love someone, it's natural, not demanding. Holiday with friends. Retro cinema.
12: Hey, where did we go? Days when the rains came.
11: Through music that speaks to you. Reconnect your past with me, Amar Nasir, on Retro 89.
13: Every Sunday evening from 7 p.m. to 9 p.m. only on City FM 89.
14: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
15: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
16: Next, this is Egyptian artist Distinct. I have played this song before. It just makes me so happy. And he went on like a tour, I think, in North America and in the UK. And everywhere he went, it was like, understanding zero, like Arabic understanding zero, dance understanding 100%. It was like a trend, and it just made me so happy to see people enjoying the music. Here's Distinct with Yama.

0: The perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाए अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
3: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में. जरूर आइएगा.
4: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89.
5: क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट हेडलाइन. इट्स इन आवर फ्लडेड स्ट्रीट्स, आवर लॉन्गर हॉटर समर्स, आवर अनप्रेडिक्टेबल सीजंस. Now, your voice can make a difference. Breathe Pakistan, in collaboration with Alertly, is building a nationwide movement, capturing real climate stories from real people. As the official technology partner, Alertly uses AI to map, analyze, and transform citizen stories into actionable climate insights. Because meaningful change begins with real voices and real data. Head to dawn.com/breathepakistan and share your climate story today on Alertly.
6: Breathe Pakistan,
7: a Dawn Media initiative.
6: Let's weather the change
7: together.
8: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
9: Non-Stop Hits.
0: City FM 89.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Phone upgrade karne ka soch rahe ho? To suno. फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G
3: वी आर सिटी एफएम 89
4: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे टिम हॉर्टन्स कॉफी मिस्ट्री थर्ड कल्चर सेकंड कप ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान तो सिप करें सेव करें और एंजॉय करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
5: सिटी एफएम 89
6: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोसा ऐप से जैज 5G
7: City FM 89 We're playing your song
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits
1: City 89
8: We're playing your song

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
3: क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट हेडलाइन It's in our flooded streets, our longer, hotter summers, our unpredictable seasons. Now, your voice can make a difference. Breathe Pakistan, in collaboration with Alertly, is building a nationwide movement, capturing real climate stories from real people. As the official technology partner, Alertly uses AI to map, analyze, and transform citizen stories into actionable climate insights. Because meaningful change begins with real voices and real data. Head to dawn.com/breathepakistan and share your climate story today on Alertly.
4: Breathe Pakistan,
5: a Dawn Media initiative.
4: Let's weather the change
5: together.
1: City FM 89,
6: your drive along companion.
1: You're listening to
7: Non-Stop Hits.
1: City
8: FM
1: 89.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
4: City FM.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 PM.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: The Weeknd has officially walked back earlier statements regarding his retirement and name change. In a recent interview, the artist confirmed he will continue releasing music under his iconic stage moniker indefinitely.
4: City FM 89.
7: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
8: City FM 89 is now live on WhatsApp.
9: It's so easy.
10: 0314-289-8989.
9: Save, text, voice note or call to get your song played.
10: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
11: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
9: 89.
2: We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
12: No talk. Just you and the music.
2: Back to back starts now.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 p.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: We're playing your song.
5: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89। वी आर
4: प्लेइंग योर सॉन्ग।
6: Pakistan, for the first time, experience Ali Noor in an exclusive live concert series across Pakistan. From the timeless anthems that define a generation to the music that continues to inspire millions, the Surrender Tour is an intimate celebration of Ali Noor's extraordinary musical journey. Expect an unforgettable night featuring iconic classics, powerful storytelling, and an immersive live performance unlike any other. Happening on 27th September at the Arts Council Karachi. Get your tickets from Ticketwala. City FM 89 exclusive radio partners.
4: We're playing your song.
1: You're listening to
7: Future Sounds.
8: No talk.
9: Just you
8: and the music.
9: Back to back
8: starts now.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
0: Follow City FM 89 on YouTube to get your digital content fix. Podcasts, reviews, interviews and so much more. Non-stop content for you.
3: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
1: You're listening to
0: Non-stop hits.
1: We are
4: City FM 89.